नहीं आया मूर्तियां दे गलों ओ हार ला के इस देवा पंडित ने ओ हार अपने गल विच पा लिया ते मंदिर दा बुआ बंद करन लगा ते दूर सारियों राजे दा रथ आंदा दिस पिया। राजे नू देखिया ते देवा पंडित घबरा गया कि राजा आ गया हार मैं अपने गल पा लिया।

अपने गलों ला के मूर्तियां दे गल पाया सी, मूर्तियां दे गलों हार ला के ते राजी दे गल पा दिता। राजा चला गया, देवा पंडित ने सुख दा सा लिया के चलो बला टली। राजा अपने महलां विच चला गया, हार ला के राजे ने सामने रखिया। देवा पंडित बुजुर्ग सी, वाल चिट्टे सन, उस हार दे नाल दो चिट्टे तौले लगे हुए सन, चिट्टे वाल।

अज पहली वारी हार दे नाल दो वाल देखे ने ते ओ भी चिट्टे ते देवा पंडित बुजुर्ग है ओ दे वाल चिट्टे ने पत्थर दियां मूर्तियां नू ते वाल आंदे नहीं किधरे ए हार देवा पंडित ने अपने गल विच तां नहीं पाया राजे नू शक हो गया राजा कहन लगा चंगा फिर कल नू जाके पुछांगा पंडित नू कि ए वाल कित्थों लगे ने उधर देवा पंडित बेफिकर है पर राजा जिहड़ा है ए हुण सोच रहा है कि

देवा पंडित बड़ा बेफिकर है कि कल दी गल आई गई हो गई, पर राजा पूछता है

एक झूठता आदमी बोल लेंदे ते जदू उन्नू छपाना होवे कई झूठ बोलने पेंदे एक झूठ नू सच बनान वास्ते ते देवा पंडित कहन लगा राजन अमृत वेले भगवान सफेद दाड़े विच

राजे दे आन दा टाइम हो गया, पर देवा पंडित नु कोई पता नहीं कदू रात पई कदू अमृत वेला हो गया, क्योंकि एदा मन जुड़ चुका है उस परमेश्वर दे नाल।

4 बजे का वेला हो गया, पर राजा आ पहुंचे। देवा पंडित दी अखां बंद ने, उन्हूं कोई पता नहीं राजे ने आना है। उदा मन जुड़ चुका है। राजा आया, राजे ने मंदिर दा टुकिया होया बुआ खोलिया, ते की देखिया, पत्थर दी मूर्ति ते सफेद लम्मा दाड़ा आया होया। देवा पंडित वल देखिया, ओ हाथ जोड़ के बैठा है, अखां बंद ने। राजे ने नमस्कार की थी, देवा पंडित नु हलाया। देवा पंडित ने अखां खोलियां, सीधा ध्यान मूर्ति ते पहला कीता। पत्थर दी मूर्ति ते सफेद दाड़ा देखिया, ते देवा पंडित ने डंडौत कीती, नमस्कार कीती।

ओदे मन विच शंका पैदा हो गया। राजा कहन लगा, अज तक सुनिया नहीं के पत्थर दी मूर्ति नू दाढ़ी आई होवे, ए कदी हो ही नहीं सकदा। इस पंडित ने पत्थर दी मूर्ति नू

आवाज आई, राजन तेरी इच्छा सी कि मैं भगवान दे दर्शन सफेद दाड़ी विच करा। तेनू दर्शन हो गए पर तू अंत लेना चाहे, तू भरोसा नहीं कीता ते जेड़ा उदा अंत लेना चाहता है वो आप खत्म हो जाता है। गुरु साहब जी कहते अनंत को चाहन जो गए से आए अंत गवाए। जिन्हें भी परमेश्वर का अंत लेना चाहिया वो आप ही खत्म हो गया। राजन आज तू बा

राम राम जपाया करदे ने। ए महापुरुषां दा रोज दा काम, एक दिन इन्नी बरसात हुई कि महापुरुष जिहड़े सन

अचानक ही इस गन का दे चुबारे थले आके खुल गए। गनका ने देखिया कोई साधु ठंड दे नाल कंबदा पे है। इन्हें बुआ खोलिया क्या संत जी उत्ते आ जाओ, महापुरुष चुबारे आ गए ने। सुके कपड़े दिते गनका ने, अग बाली, महापुरुष बैठे चुबारा देखे। कहन लगे मना तू बड़ी गलत जगह से आ गए। महापुरुष उठ पे कहन लगे मैं वेसवा दे घर आ गया। महापुरुष उठ के तुर पे। गनका जिहड़ी सी हाथ जोड़ के महापुरुषां दे चरणां ते डिग पई। कहन लगी संत जी मैं सारी उम्र पाप कीते ने, पर हुण पापां तों डर लगन लग पे। मैनू कृपा करो, मैनू नाम दान बख्शो तां कि मैं इन्हां पापां तों बाहर निकल सकां। ओदी बेनती सुन के महापुरुष ओदे ते दयाल हो गए। कहन लगे बेटा साडे कोल ए तोता है, ए असी तेनू दे चलने आ, ते तेरा काम रोज सवेरे उठ के इस तोते नू जदू उठाना है ता ए कहना है गंगा राम कहो राम राम। जे ता इनू राम राम जपावे ता तेरा उधार हो सकता है। गणका कहन लगी महाराज जिस तरह कहोगे मैं उसी तरह करांगी। महापुरुष अपना तोता इस गणका पापण नू दे गए ने। भाई गुरदास जी बयान करते हैं।

रोज सवेरे गनका उठ के असोता कहंदे ने जगा के तोते नु जगा के कहना गंगा राम को राम राम। रोजाना ही हुण पाप छड़ दिते ते तोते नु राम राम जपान लग पई ते एदी लिव तोते नु जपांदिया जपांदिया अपनी भी लग जांदी।

दुरमत कहंदे ने माड़ी मत, माड़ी मत भी दूर हो जांदी है। कलेवर कहंदे ने शरीर नू, शरीर दे कीते पाप सारे खत्म हो जांदे ने, जिड़ा मन करके राम राम कर।

जमदूत पछाट गए, देवते बैबान लेके आ गए ने। उस विश्वा दी रूह नू बैबान विच बिठा के बैकुंठ जिथे परमेश्वर है, जिथे परमेश्वर दा नाम है, उस बैकुंठ नू ओ पापन वेसवा सारी उम्र पाप करती रही पर मन करके राम किया, ते ओ वेसवा भी बैकुंठ नू चली गई। नौ नारायण छोत अछोता, छोत अछोता कि जिहड़ा परमेश्वर दा नाम है ओ पापा तो रहत है।

जानते हो मुकुट पे बदक एक शिकारी सी, चरण कृष्ण भगवान दे एक रात कृष्ण भगवान जंगल विच लेटे हुए सन। अपने एक लत ते दूसरी लत रख के कृष्ण भगवान दे पैर विच पदम सी जिड़ा के बड़ा चमक रहा सी। रात दा वेला सी, ए बदक शिकारी शिकार खेडन वास्ते आया। कृष्ण भगवान दे पैर विच जिड़ा पदम चमक रहा सी, इन्हें समझिया कि शायद कोई हिरण बैठा है। किसे हिरण दी अख पई चमकदी, उस बदक शिकारी ने निशाना लगा के तीर छड़िया। ओ जड़ा तीर सी कृष्ण भगवान दे चरणा विच आके लगा। बदक शिकारी आया, हिरण दी जगह कृष्ण भगवान दे चरण जख्मी होए देखे, ताए भगवान दे चरणा ते डेग के रोन लग पया। ते कृष्ण भगवान ने कहा, भाई तू रो ना,

क्योंकि साड़ा आखिरी समा आ गया। असी हुण ए दुनिया छड़ के उस परमेश्वर दे कोल जाना है। भगत नामदेव जी कह रहे ने कि उस बद्धक शिकारी ने भावे कृष्ण भगवान दे चरणा विच तीर मारे है, पर कृष्ण भगवान ने उन्हों फिर भी गल दे नाल लाया ते उह मुक्त पए ते उस बद्धक शिकारी नू भगवान ने तीर खा के भी मुक्ति दे दिती। ते भगत जी कहंदे ने हौ बल बल जिन राम कहे, मैं उन्हां तू बलिहार जाना जिहड़ा इंसान मन करके

दासी सुत बिदर पांडवां दा मत्रेया भरा सी। पिता ते पांडवां दा जिहड़ा पिता सी ओही बिदर दा भी पिता सी, पर बिदर दी जिहड़ी मां सी ओ गोली सी नौकराणी। के भगवान ने दासी सुत दासी दे पुत्र बिदर नूं भी तारिया, सुदामे नूं भी तारिया, ते उग्र सैन जिहड़ा सी उग्र सैन को राज दिए। उग्र सैन

के जप नहीं कीता, तप नहीं कीता, कुल भी चंगी नहीं, कर्म भी चंगे नहीं, पर नामे के स्वामी ते उतरे। पर नामदेव दे स्वामी ने नामदेव नू फिर भी तार दिता, ऐ भाई जे मैं तर गया ते तुसी लोग क्यों नहीं नाम जपदे, तुसी भी नाम जपो, तुसी भी तर जाओगे।

ना पीजे बार बैठे हैं सुन, ना पीजे रूपी माली रंग, ना पीजे तीर्थ पविए नंग, ना पीजे पेड़ मरे पिड़ सूर, कोई बड़ा सुरमा होए अपने आप नू खत्म कर देवे रण विच, रब नहीं पीजदा। ना पीजे केते होवे धूड़, कोई अपने आप नू धूड़ भी बना लवे, पर आखिर विच गुरु पातशाह गुरु रामदास महाराज सारंग दी वार विच कहंदे हन, लेखा लिखिए मन के पाए, जे तेरा मन ही नहीं होया

संत जन्म बिशरेते मागो जो जन्म तुम्हारे लेके चरण दास आस लग जीवो चिर भयो दर्शन देखे दुनिया बद

0: सब इस तुक नु गायन करो और सिंह। दिस इज द शब्द ऑफ धन गुरु रामदास साहेब, सोट महला
1: चौथा।
0: सब मिलके करो कीर्तन।

रूप रंग अनरेख भेद को कह न सकत के अचल मूर्त अनुभव प्रकाश अवतोज कही जय कोट इंद्रिंद्रान शाह शाह गणी जय आद सचिन।

जो इच्छे सोई फल पावे, जेड़ा ठाकुरां दी सेवा करदा है ओ जो मंगदा है ठाकुर उन्हां नूं दिंदा है। ए गल पुजारी नहीं तन्ने नूं कही।

पुजारी ने अपना पिछा छुड़ा लिया। होने ते फर्क है, ओ पुजारी पत्थर दिया मूर्तियां दी पूजा करदा है, पर पत्थर समझदा ते तरने नू उस पुजारी ने कोई मूर्ति नहीं दिती, बारों एक पत्थर चुक के दिता, पर तन्ने दी भावना उस तन्ने ने उस पत्थर नू ठाकुर समझ के

के दही रिड़क के लस्सी बनाई, एक थाली विच रोटी रखी, नाले लस्सी लई ते ठाकुर दी

ते मेरी भी फिर जिद है, मैं भी जट इथे रख के अपने हथा नाल तैनू रोटी खवानी। याद रख जे तू रोटी नहीं खानी ते मैं भी नहीं खानी, पानी नहीं पीना है ठाकुर, जद तक तू रोटी नहीं खाएगा।

जद तक तू रोटी नहीं खाएगा मैं भी रोटी नहीं खानी पावे मेनू भुखिया मरना पवे। साध संगत जेड़े लोग ए गल कहंदे ने किथे रब किन्ने रब देखे उन्नू पुछो भाई तू इस लायक है कि तू रब नू देख सकी जे देखना है उस नू ते भगत धने वर्गा अपना मन बना लो। कदी क्या किसे ने ऐ ठाकुर ऐ सतगुरु ऐ रोटी पई जद तक तू नहीं खावेगा असी नहीं खाएंगे। जद कदी क्या नहीं उन्नू मिलन दी कोशिश नहीं कीती ते सानू ओ रब ओ सतगुरु किस तरह मिलेगा। ऐ तन्ना बैठा है कहन लगा ठाकुर फैसला कर लिया जे तू नहीं खानी ते मैं भी रोटी नहीं खानी। जद मन विच ए धार लिया ता उस परमेश्वर नू आना पिया परतख होके धन्ने दे सामने बैठ गए।